0: हंगार अंगार दो मेंदुल कोरी एकार गड़ फणा रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो केरे मेंदमो पार गड़ तेरी हूं
1: हंगार
2: हम एकनी दिवे ही राज्य चाडू
3: एहारा मिहारु के फिल्म तो के हिग्गे मंजर तका लवतो के तेरी फीना लमा
4: ए बला मिहिरा लतीफा कौन सा का गोस्ता तो ती अन्ननी है
5: बिमारी किहिने

0: Mamma, badu aveja.
1: Tarifla, soni aga tu buni. Mamma ibe che mi ke muluwa.
0: Papa, gadi che hani e.
2: Tarifla madu kobbada.
3: Sonia, debel maasha school anda.
4: Tumhi ne to kaha tha. कि सच्चा प्यार सबसे बड़ा होता
0: मामा
4: किस पर से भी
5: मामा फोन है का हाँ माधवार यह तैयार दावी थाना कड़ी वाइपर कराना
0: मामा वैस फोन होगा डोंटा
6: कोको डोंटे कमी कड़ी गाले नूले वेने दे सोनिया गाता
7: एहनिन गुलुंता बदहि कुराफा दान एम गातुगावा गुलुंतका एम फुरतम स्कंदेमा
8: ए प्रोग्राम कुं गिना मालूमात तकें एहुन तेरेना फोर को दिनुमा दिव्य राज्य गडुं गनस्तनी अदुगे राज्य
9: राज्य के एक ही कंकोड़ताओं का आमुन्नंग अमास कोंगिंगा हरकेता कलंडर
8: सरकार के एक ही इदारा तो कुंदे खिदमत तंग हो दाने फंसे हैं कोई ता
9: खिदमत गैजेट का कानूनी गतन शायद को फावा लियों ता आवास खाली है को
8: आमु दिरियों मुगा कोम्बे मीह का बेन वाने मुहिम मालुमाता
7: अतुके राज्य
9: आदित्य बुरा स्वच्छ
8: कम में दोहे के हैं दोनों नुआगढ़ी फाने रहे हैं
9: स्टूडियो ही वगुतु
10: हेलो कब मेरे दुकी है ने
11: वारा रंगल
12: वारा फक्का हम
10: मेरे दु यहाँ रंगले नो
12: वारा बलिको
10: देंगे कहाँ लगोते
11: हम वारा बेस्टो
12: दें यहाँ यहाँ नो
10: ehun teringe hala hual olum filwala wahaka dakkaluma
11: komme buda duhe gere gadu egar gat sum minute ka tivi raja gadu genesteni
10: miyatu kihine engha satarste ka 49 kilohertz medium wave adi 89 megahertz fm band

0: खबरों का डे।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। देवी राज्य गड़गे मेंदम बार आगे खबर के मुहिम सुरखित के तेरे का माल सरहद स्कूल फ्रेंडली बस्त के तारफ कुरमा मसके कुरमंदा कमा इक्तिसादी तरक्किया दतुर फतुरा व्यफार या बेहे वजीर विदार विचे कोमे दिवस का फायदा बहागुता सरकारुं दिह रिसोर्ट हिदम की फतुरवेरिक मंगणाने बड़ बदले की गुतुगा सिफकुरवा एकमा मटी के चेयरमैन थाई दुकरवैफी ग्लोबल दुकानों व्यापारी कोरा दिवे ही कस्टमरों ना फंसे है कमाए को फैसा देखके ने कोई मोल्डिस पोस्ट में देर को तारफ को फी होती ना देखो लफेशी ऑपरेशन का हैसते का हंगुराम बेरी मरा लेफी मिगड़ी के खबर आके में बदल कुरनी नस्त रशीद दें खबर तो के तफसील तक आके कुरियताना

0: तीन है ये, तीन टोटल। बता इसमें से किसको पहचानता तू, बता। हा? इसको पहचानता है?
1: मोटी चंदी साबित।

0: दुनिया के हतरु पितु
1: राचेगे उतुरा देखुनु
0: खबरा मालूमात
1: हुट्टु मेन्नेति सव्वीस कडीरु
0: दिवहि राचेगे आडु
1: एंहा सतरस्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अध्यनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
2: फतिया कंग अलीबिलेनी आ वाह के क्या को कुम्मे हवीरे निमिगिंदनी अधि मुलिंग आ वाह के क्या दीफ कुम्मे दुहा कुम्मे दत्रुकुरंचे आ मगुतक क्या दनी अनेक कावस आ वाह के एकमक एइंको में वाहके कुंद अस्कुरं भी आफिलाव हासिल कुरं भी आई बुरते